को पूरा जानकारी को लागी ज्योतिषाचार्य पंडित प्रेम प्रसाद सुवेदी को साथ में नेपाल भर एकै साथ प्रसारण हुने कार्यक्रम ज्योतिष वास्तु सुन्न नभुल्नु होला।

भइरहोस्, मेरो देश हाँसी रहोस्, मर्न परे मै मरौ, मेरो देश बाँचिरहोस्, मेरो देश।

दिल परदेसी हो गया। हर कसम तोड़ के नाचूं, हर कसम तोड़ के नाचूं, हर कसम

मै झोटी अम्भलाई देऊ महरे महरे फुलवा महके फुलवारी बरा दूर बावे हो मोरे साली जही फुलवा चूरे में।

0: अगले सुंदर मुंचा रेडियो साइन 89.8 मेगाहर्ट्ज़।
1: तरेली संगीत कुंजा प्रस्तुत करता है।